0: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: हिंदुस्तान का दे रहा तू?
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: लड्डू बोल लड्डू
0: लड्डू
1: लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंधू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार।

दर झलक दिखला जा, करें किसे हम बयां, उम्मत के सहारे आजा, जब तुझको पुकारे आजा, हाले दर्द में हम करें किसे हम।

मोहम्मद, इधर है खुदा और उधर है मोहम्मद, मिला है तुझे मुस्तफा का वसीला, शहीदीन खैरुल वरा का वसीला, तुझे हक ने ताजे सदा

लबे जिंदगी पर तेरा नाम आया। मुबारक हो तुझको मुसलमान होना, मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान होना। जो मस्जिद में जाकर तू मेहमान रब हो, फरिश्तों को भी तेरा पाते अदब हो। जहाँ पर भी तेरा आलम खुल गया है, वहीं दुश्मनों का

कहीं ऐश्वर्य शब्द तुमर न जाना, कहीं मौत के खौफ से डर न जाना। बड़ा भी अगर जान जाए तो जाए,

वक्त रूठा है, मुसीबत की घड़ी है आका, दिल लरसता है, कजा सर पे खड़ी है आका। आरज़ूओं की जमीन खुल

आप की गुल्फ घटाओं से बड़ी है आका, आप चाहेंगे तो बरसात भी हो जाएगी, आप चाहेंगे

जाना रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेर इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंदनेल। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

थोड़ी मीठी से थोड़ी सी खट्टी, मस्त वाली हमारी ये जोरी। हम दोनों यू मिले, हिलक फील गुड गाना, हिलक धमक गाना, हिर भाई उजाला रेडियो, और फिल्म का नाम है 14 फेरे, इंतजार 2021।

मेरा है तू, मेरा मिला यू जैसे बिछड़ा ना तू. ब्यूटीफुल गाना द स्टेम फ्रॉम यशिता शर्मा साहब मेट अभी हियर सो बाय उजाला रेडियो. हॉर यू नेचुरली द बेस्ट एंड द मोस्ट मोइस्ट नंबर्स दी यू मार कम बडेंकर. Ja, we variëren met rustige Ghana, Hamaka Ghana. Ik zie ik mooi mooi Ghana. Tussendoor ook een beetje Love Ghana. Alles wat er maar is en alles wat mooi is om naar te luisteren. Ja, dat heb ik speciaal voor jullie geselecteerd.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम जैतोस कॉर्मलिंक वेख नंबर 1 से सिमित वेख सेंट्रम कॉर्मलिंक के बहेर्दर्स को ऑर्डिनाटोरन और सभी फ्रेवेलखर्स बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल की आयु में अख्तन जीफन तक यार औत वेख सेंट्रम कॉर्मलिंक के बहेर्दर श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग स्टैनली हीरा के नाम से पहचानते और पुकारते थे। पहले पारामारिबो कॉम्बी का रहने वाला था। अम्स्टर्डम जैतोस कॉर्मलिंक वेक नंबर 1 से सिमित वेक सेंट्रम कॉर्मलिंक के बहेर्दर्स कोऑर्डिनाटोरन और सभी फ्रेवेलखर्स बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल की आयु में अख्तन जीफन तखियार औत वेख सेंट्रम कॉर्मलिंक का बहेर्दर श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग जीवित में स्टैनली हीरा के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल शनिचर के दिन में 1 बजे किए जाएंगे। मोरखन जात दख एन उर वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर इन सभी के दुख में शामिल है।

0: कुदरत का करिश्मा एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की सरसमे पर किस्मत को है आसमान, ये प्रेम का जहां है हर कृष्ण भूल जाना, आपस की मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजा रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, आज शुक्रवार 4 तारीख सितंबर का प्रोग्राम, फ्राइडे 4 सितंबर। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। मैं हूँ सुबह से गोपीत और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक आप सभी को आज सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूँ। वेलकम, खुद मोर खलमाओ। चाहे यहाँ पर आप लोग हमें सुनते होंगे, सुनते ही जाइए, दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी को हम खिदमत करने वाला हूँ। वीकेंड है, अभी से आप सभी सुनने वाले को शुभ वीकेंड, फैन वीकेंड खबर हमारी तरफ से। और चलिए प्रोग्राम को हम आरंभ करते हैं सुंदर सा भजन और जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य पर आप लोग सुनेंगे ये शानदार सा भजन।
1: Today's playlist is dedicated to Lord of the Universe Shri Krishna, the divine avatar of Lord Vishnu and the symbol of love, wisdom and devotion. These timeless bhajans and devotional songs bring the divine presence.

जय जय राधा रमन नाउसरों से ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और यू एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं आज शुक्रवार 4 सितंबर का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं अमसराम शहर से प्रोग्राम को बना रहे आप सभी सुनने वालों के लिए खुद मोर खालमाओ।

हो जाता है प्यार न जाने को ही। कुमार सानू एंड सपना मुखर्जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे हमारे प्यारे सुनने वालों, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

वेल ये इश्क पहला शुरू हुआ। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और मेरे शहर में जहां पर इस वक्त माइक बुद्धू जी प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो भाई जी ये गाना तुम्हारे नाम।

वाल कितना मोई जो कोई चुपके से तोर सपनवा में आई तो कितना मोई लगे है यार। वाल या वाल 20 मिनट बाकी रहा 10 बजे।

वेल, दिल की धड़कन यही कहते हैं कि तू है दिल के दास्तां। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जय फैंस पोल्डर में, जहां पर इस वक्त एमईजी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

0: सोचता हूँ कि आज भी तुझसे प्यार है लेकिन तेरी खामोशी याद आ जाती है। और इस तरह से ये खूबसूरत सा कवाली प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो। करीबन 5 मिनट बाकी रहा 10 बजे में हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का दफ्तर भी आज 10 बजे सुबह से खोले जाएंगे शाम में 3 बजे तक। जहाँ का फोन करना हमारे 9 3 9 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना हो तो आप सही कर एकदम तार कर सके हैं।
1: तेरे नाम
0: आई बॉय।

प्यारे हमारे प्यारे सुने वालो ना दे ब्रेक ना दे रिक्लाम बेने के वित्रुख यार कहीं पे ना जाइए यहीं पे रहिए हमारे साथ यार

चला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। आज शुक्रवार 4 तारीख सितंबर का प्रोग्राम। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आपके साथ हम देने वाले हैं दिन में 12 बजे तक। हम आप लोग से बता चुके कि आप लोग मुझे अपना कर सके हैं। और चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे बहुत ही प्यार के साथ, या वेल

और चांद से पर्दा कीजिए ओ मेरे हम नवा। इस तरह से कुमार शानू जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, और देखा जाए हम सर तो उसमें हमारे मामी खैरदा जी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, और आज जबकि कृष्ण जन्माष्टमी है तो ये शानदार सा भजन जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

कृष्ण कन्हैया की और इस तरह से अनूप जलोता की आवाज में ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और कृष्ण जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य पर ये भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, आप सभी को बधाइयां शुभकामना।

0: वेल, कितना मोर कितना विशाल, हर जन्म में तेरा इश्क मेरा साथ रहे, और जब बोले हवा बदल जाए तो तेरा प्यार मेरा साथ रहे। वेल एंड यू आर उजाला रेडियो, उजाला रेडियो द बेस्ट वन।
1: एक पल में बदल गई जिंदगी।
0: और चलिए अब की बार अनुराधा पौडवाल एंड पंकज उदास जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे,

तेरे खामोश होठों से मोहब्बत गुनगुनाती है। अवसर से अनुराधा पौलवल एंड पंकज उदास जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम द बेस्ट वन। आई एम द बेस्ट।

गोरे गोरे गालों पे तोरे गोदनवा बोले जुलुम कर रहे ना। आई सरसी गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने जबल यू आर उजाला रेडियो है। आई बॉय इस मौसम में ये सब गाना कितना मोई लगे सुनत।

वेल कौन अलबेली जरा पानी भरे वेल यू आर उजाला रेडियो अच्छा इस भाई ना वीकेंड यार वीकेंड में का होई का कर खोई जो भी लोग आप लोग करेंगे प्यार से कर लेना दुलार से करिए नहीं तो ना करिए यार वीकेंड तो है।

कल कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे मुझे भी साथ ले लो। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुने वालों, करीबन 5 मिनट बाकी रहा 11 बजे में। 5 मिनट फॉर अल्लाह।

तेरे द्वार पर भल भीर भाई भारी यार अरे अत्यार। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे वीकेंड है यार, एंड वीकेंड रेडियो उजाला रेडियो है अमंग स्पांग यारा।

गनवा ब्रेक के उस पार ना एल्फियर हम तो क्या पूरा सुना देबे ना द रिक्लाम आई बोई तो लोग पकाई भाई ले

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। मैं हूं सुभाष शिव गोविंद जी, खुद मोर खालमाओ। करीबन 7 मिनट व्यतीत हो चुकल है 11:53 ऊपर अलग फ्राइडे 4 सितंबर वीकेंड, इट इज बैना वीकेंड यार। और वीकेंड तो हमें चाहिए, आप लोग जो ची करिए प्यार से करिए, दुलार से करिए, और ना करिए नहीं ना करिए, हम तो उनसे बता ही चुके हैं वादा के मुताबिक। हम बोले रही ना तो ब्रेक ना रख लाम गर्मा तो।

और चलिए इस बार तो पंकज उदास जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। और चलिए प्रोग्राम में एक गजल जो हम आप लोग को सुनाने वाले हैं,

बादल। और इस तरह से एक खूबसूरत सा गजल जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो है जीमन शहर में फौसिया भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। तो चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं।

लाल बलियार 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था और आज भी रहेगा कल भी रहेगा। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो मेरे शहर में राना गाना मांग करे से और खास करके अपन लिप फ्रॉक के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ।

चेहरा क्या देखते हो, बोले दिल में उतर कर देखो ना। आई बॉय कितना विशाल कितना मोई गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अमसरम अक्कर में देखा जाए है गोपी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने है खुद मोरख। आओ चलिए गाना तुम्हारे नाम। और गाना को मांग कर इसे अपन लिफो फ्राउआ के लिए प्यार के साथ।

अल्लाह कितना मोह मुझे मुझे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालों, नाद नाद ब्रेक फन ट्वेल्व, फिर मृत्यु समाचार के बाद चाय एंड कॉफी, यावेल सुन लेना मृत्यु समाचार के बाद करीबन 12:30 बजे हाल ऑफ फेम चाय कॉफी लॉयड एंड आनंद।

या बोई पल पल दिल के पांस बोले मैं इधर सांस लेता हूँ बस यार तेरी खुशबू आती है कितना विशाल कितना मोई अल्फाज बोले मैं सांस लेता हूँ तो बोले तोर महक आवे है वेल कितना मोई है वासत में वार कभी कभी सपना में हो जाए यार

बादल यार उनसे मिली नजर यार की मेरी मेरा मेरा मेरा होश उड़ गई। हाय बॉय ऐसे होवे तो जब नजर मिली तो हमार होश गल काम से। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम करीबन 15 मिनट बाकी रहा 12 बजने में, थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ।

और जो हम मांग लो ना हो तो रहे रहे के नतुल्लक। और हमारे प्यारे सुने बोलो 12 बजे की बात है मृत्यु समाचार, और उसकी बात आप लोग सुनेंगे चाय एंड कॉफी आनंद एंड लोहित के साथ।

वादिया मेरा दामन अवसर से गाना जो आप लोग सुने राणा मताई के आवाज में एंड रोहतना में सुग्रीम भजन भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं तो ये गाना तुम्हारे नाम बल लाखों आई बॉय

0: और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने हमारे प्यारे सुने वालों, ठीक देखा जाए करीबन 4 मिनट बाकी रहा 12 बजे में, और इसका ये मतलब हुआ कि धीरे धीरे आप लोग से हम इजाजत चाहेंगे। आशा है कि आज का प्रोग्राम जिस तरह से हमने बनाए और सजाए आप लोग को पसंद आई होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड शुक्रिया। और अब ना भूलिए चाय या तो कॉफी के साथ आनंद एंड लॉज के जरिए सुन लेना हलफेन, और फिर हलफेन
1: मेरे दिल की घड़ी।
0: आई बॉय, ये दिलवा का करे है यार,
1: रात की बारा
0: ये दिलवा बड़ा मुश्किल करे है। अफराल ये मौसम है, पानी के मौसम है, दिल की घड़ी करे टिक टिक
1: जब बजे रात की बारा, हाय तेरी याद ने मारा।
0: और तो लोग मोई से रहिए, अपना वीकेंड तो लोग मोई से बिताइयो। हम हरदम बोले लो जो ची करिए प्यार से करिए, नहीं तो ना करिए।

अच्छा यार, तो लोग मोई से रहिए, अपना वीकेंड तो लोग मोई से बिताइए, जो भी बनाइयो, जो भी खाइयो मोई से खाइए, और मोई से रहिए। तो लोग हम आप लोग से फिर मिलेंगे यहीं पर, जहां पर हम छोड़ के जा रहे हैं, यहीं पर मिलेंगे। जब बजे रात की, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपको सुबह, शिव गोविंद, बाय बाय, स्वाय स्वाय।

0: का झंडा, एक हाथ में श्री नाम का झंडा, दूजे में तलवार, कोम का होगा तभी उधार।
1: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्म भूमि सुरिनाम से, और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक एतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिक एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
0: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
2: In Yuli was that 40 yard.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। रोटरडम से समस्त परिवार बहादुर, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में ट्वेंटख यार औत पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयक उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पेम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकाई बहादुर के आजी परपतो आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल की पत्तो। रोटरडम एसलमोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेरखफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी जो थी। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में ट्वेंटख यार औत पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयक उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पेम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी किनारा और त्रिकई बहादुर के आजी परपतो आल्बा गोंजालेस की ननिया सास आईमी और फेलोरी देदर्त के पराजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पत्तो। रोटरडम एसलमोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक जात दखास्तांद फन एन तोत्वे उर रोसेंट्रम खुदजी के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे। मान दखास्तांद त्वे उर देला आंदफान क्रेमाटोरियम मातलिंकवेख 101 रोटरडम में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कपेला ऑन द एसल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल के आयु में त्वयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त की सास अनिल और मरलेशा दीदर्त के नानी आल्बा गोंजालेस की ननिया सास आईमी और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सुरीनाम न्यू वेर्ख फोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कपेल ऑन द एसल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त के सास अनिल और मरलेशा दीदर्त के नानी आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रॉक सेंट्रम खुदजई के मुर्दालय भुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया किए जाएंगे आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदा होम ट्वे यूर देला क्रीमेटोरियम मातलिंक वेख 101 103 रोटरडम जुइट में।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। खुश ज़ीलैंड के रहने वाले परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वीयन तख्त ख्यार और स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गोलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, बेया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, संद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमनी जगेसर बहादुर के भाऊजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी, रीता लेन बहादुर की बड़की, एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट वेलखर्स के सरहज और सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी, रोटरडम एसलमोंड लायरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और सूरीनाम में पहले न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। खुश ज़ीलैंड से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वीयन तख्त ख्यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गोलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, बेया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, संद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर, इन लोगों की भाऊजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी, रीता लेन बहादुर की बड़की, एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी, रोटरडम एसलमोंड लायरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु हो गई है रोटरडम में। इन्हें लोग मारी बहादुर के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने की मौका है। शनिचर आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक जातरदखानस्तांद फन एन तो ट्वी यूर रो सेंट्रम खुदजी के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेग 101 रोटरडम जुइट में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-51-55-02-71 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार बहादुर और परिवार सुखदेव और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 78 साल के आयु में अख्तन सैफ अंतखियार और बीबी साहबा जमीला खातून मिला हीरा बंधु का पति लड़कन क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अनग्रासिया नंदलाल का ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा जिया हीरा का नाना अम्स्टर्डम जोयतोस का रहने वाला श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। स्टेनली हीरा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले पारामारिबो कोम्बी वेह का या तो कोम्बी का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल के आयु में अख्तन सैफ अंतखियार और बीबी साहबा जमीला खातून मिला हीरा बंधु का पति लड़कन क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अनग्रासिया नंदलाल का ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा जिया हीरा का नाना अम्स्टर्डम जोयतोस का रहने वाला श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा के मृत्यु हो गई है। स्टेनली हीरा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले पारामारिबो कोम्बी का रहने वाला था। अर्थी के दाह क्रिया कल शनिचर के दिन में 1 बजे मोरखन जात्रदाह एन उर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्त फुरसोरखें परिवार हीरा और बाकी परिवारों के दुख में शामिल।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

नजेबे अब नजेबे भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुनने वालों, और उजाला रेडियो के जरिए हम यही सलाह रहे हैं आप लोग की फरमाइश, और फरमाइश हम पेश करने वाले हैं सांदाम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगा की आज 74वीं फिर से याद रखे। ये सालगिरह के खुशी के मौके पर आपको ये सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आपको हर एक बीमार से, हर एक मुसीबत से दूर रखे। साहब ऑस्कर भगाए फन हर तुम्हें तो फिर से सफियारा आपको के ना जाने हैगा। आपका नाम है ऑस्कर भगाए एंड इधर कैंटीन तिलक वाला है साहब ऑस्कर भगाए फन हर तुम्हें तो फिर से फरियादा सालगिरह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह मुबारक हो। सांदाम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगाए की आज फिर से फरियादा है सालगिरह के खुशी के मौके पर। आपके प्यारी प्यारी बीबी साहबा, बीबी साहबा हबीबन मीना रजब प्यारा प्यारा खावीन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ पेश करें हैं।

0: आज है शुक्रवार 4 तारीख सितंबर है। आज 4 तारीख सितंबर को असम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगा की आज 74वीं फिल्म संयुक्त आ है और इस सालगिरह की खुशी के मौके पर आपके प्यारी प्यारी बीवी साहबा हबीबन मीना रजब प्यारा प्यारा हैंडसम सा खाविन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ फरमाइश के सांदाम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगाए की 74वीं फिल्म संयुक्त सफ़ेद हाज है। सालगिरह के खुशी के मौके पर असन दिलफ के रहने वाला बेटा फैजल भगाए प्यारे प्यारे पापा के लिए, बहू बीबी साहबा सुसान भगाए प्यारा प्यारा ससुर के लिए, शनाया सुनैना ईशान और शाया भगाए दादा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबादी दुलार के साथ अर्ज करें। सुनिए आप
1: ईश्वर रब खुदा भगवान के कई रूप हैं, लेकिन एक ऐसा रूप जिसमें सब समाया है वो है पिता। पिता क्या है ये शब्दों में बयां कर नहीं सकता, शायद पिता से बढ़कर इस जहां में कोई हो ही नहीं सकता।

Zaandam के रहने वाला साहब ऑस्कर भगा के आज 74वीं verjaardag है और इस साल ग्रे के खुशी के मौके पर आसंदेलव के रहने वाला बेटा फैजल भगाए प्यार प्यारा पापा के लिए बहू सुजान भगाए ससुर के लिए शनाया सुनैना ईशान और साया भगाए दादा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबादी दुलार के साथ फरमाइश के सांदम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगा के आज 74वीं verjaardag है साल ग्रे के खुशी के मौके पर दयारख साहब ऑस्कर भगाए अपनी प्यारी प्यारी खलीफ़ ब्यूटी क्वीन बीबी साहबा हबीबन मीना रजब के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज करें

सांदम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगाएं की आज 4 तारीख सितंबर को चौहत्तरवीं 74 व्यारदाग है खुशी के मौके पर नगमा फरमाइश के बीबी साहबा हबीबन मीना रजब प्यार प्यारा खाविन के लिए हैंडसम सा खाविन के लिए बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ ऑस्कर भगाएं की चौहत्तरवीं 74 व्यारदाग आज है सालगर के खुशी के मौके पर परमानेंट के रहने वाले बेटा निशाल भगाए पापा के लिए बहू राबिया भगाए ससुर के लिए रोमानो रनिशा राइश रोहन और रयान भगाए दादा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबादी दुलार के साथ अर्ज करें।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

Zaandam के रहने वाला ऑस्कर भगाए के चौहत्तरवीं 74th verjaardag haatje और इस साल ग्रे के खुशी के मौके पर द यार गजलफ साहब ऑस्कर भगाए अपनी प्यारी प्यारी बीवी साहब हबीबन मीना रजब के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज के प्रोग्राम में उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में फरमाइश जारी किया जा रहा है। सांदाम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगाए के 74वीं सालगिरह है 74th और इस सालगिरह के खुशी के मौके पर बुमरन से बेटा रेजा भगाए पापा के लिए बहू क्लाउडिया भगाए ससुर के लिए शयान अलिया क्लुए और मेसन भगाए दादा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और दुलार के साथ अर्ज करें सुनिए आप।

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में फरमाइशें जारी किया जा रहा है, या आप जो नहमा सुने हैं इस पर फरमाइश लाए कि इस तरह से सुनने वालों, आज जबकि शुक्रवार 4 सितंबर है तो सांदाम के रहने वाला है साहब ऑस्कर भगा के 74वीं फिर संयुक्त सालग्रह हैं, और इस सालग्रह के खुशी के मौके पर

खुशी के मौके पर पूर्वमरण से बेटा रजा भगाए पापा के लिए, बहू क्लाउडिया भगाए ससुर के लिए, शयन अलिया क्लोए और मेसन भगाए दादा के लिए बड़ी प्यार और मोहब्बत दुलार के साथ अर्ज के प्रोग्राम में है।

साहब ऑस्कार भगाए, थोड़ी देर के लिए हम आपके फरमाइशें को रोक देते हैं। ना तो कमर्शियल ब्रेक, ना तो कमर्शियल ब्रेक, बाकी की फरमाइशें उजाला रेडियो के जरिए हम पेश करने वाले हैं, जरूर सुन लेना। आज आपकी सालगिरह है, 74वीं है। ये सालगिरह की खुशी के मौके पर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखें, खुश रखें, तंदुरुस्त रखें और हर एक बीमारी से दूर रखें। आप ये सालगिरह धूमधाम के साथ मनाइए, पूरा रिश्तेदार के साथ, जान पहचान के साथ। हार्ट में तू 74वीं आज शुक्रवार 4 सितंबर को जो है, सालगिरह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बेशक प्रोग्राम को सुन रहे ना तो कमर्शियल ब्रेक, उजाला रेडियो के जरिए बाकी की फरमाइशें लाई जाएगा उजाला रेडियो के जरिए। चलिए प्रोग्राम में हम एक नहमा सुनाने को जा रहे हैं सुनने वालों, और ना दिन में डॉन कमर्शियल आएगा और कमर्शियल के बाद हम फिर से हाजिर होंगे लेकर फरमाइश साहब ऑस्कर भगाए के लिए।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: झंडा एक हाथ में श्री नाम का झंडा, दूजे में तलवार कोम का होगा तभी उधार।
2: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सुरिनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
1: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
4: Ujala presents The greatest voices of Bollywood, raga en rhythm kesaad, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattedien en Nizam Waghi Dozijn kesaad. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in totaal 465 kilometer file in Nederland. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. En op de A35 van Almelo naar Enschede doe je er ook een half uur langer over tussen Hengelo-Zuid en Enschede. A50 Apeldoorn en Arnhem tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ये है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम फरमाइश जाहिर कर रहे हैं सांदम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगाए के लिए जिनके आज 74वीं 74 से फियारा है सालगिरह के खुशी के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद अर्ज किया जा रहा है अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे खुश रखे तंदुरुस्त रखे हर एक बीमारी से दूर रखे

0: तुमसे।
1: उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में नहमा जो आप सुनने जा रहे हैं, फरमाइश इस तरह से है सुनने वालों, आज जबकि शुक्रवार 4 तारीख सितंबर है तो सामदाम के रहने वाला ऑस्कर भगा के आज 74वीं फिर से आ रहे हैं सालगिरह के खुशी के मौके पर। आपके प्यारी प्यारी बीबी साहबा हबीबन मीना रजब अपने प्यारा प्यारा हैंडसम सा खाविंद ऑस्कर भगा के लिए 74वीं 74 सालगिरह की खुशी के मौके पर, फरियादा के खुशी के मौके पर प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज करें।

0: Sandam के रहने वाला साहब ऑस्कार भगाए कि आज 4 तारीख सितंबर को 74वीं 74 व्यारह है और इस साल ग्रह के खुशगवाओं के पेड़ बीबी साहब हबीबन मीना रजब अपने प्यार प्यार खाविन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ हैंडसम सा खाविन के लिए है नहवा को मांग के इस बार सांदम से सीला आलमा लिलियन और बीन प्यारा प्यारा भैया साहब ऑस्कार भगा के 74वीं सालगिरह के खुशी मौके पर बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी के साथ अर्ज करें हैं
1: आप क्या सोच रहे हैं भैया
2: सोच रहा हूँ विशाल जब मैं यहाँ आया था तो कितना छोटा आदमी था आज तुमने कितना बड़ा बना दिया बहुत बड़ा

शानदाम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगा के 74वीं 74वीं फेयरा हाजिर और इस साल ग्रे के खुशी के मौके पर खासकर शानदाम के रहने वाले सीला आलमा लिलियन और बीन प्यारा प्यारा खलीफ भैया के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नाम को फरमाइश किए साहब ऑस्कर भगा के 74वीं 74वीं आ रहा है और खुश होकर शानदाम से प्यारी प्यारी बीबी साहबा हबीबन मीना रजब प्यारा प्यारा खाविन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज करें सुनिया

संदम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगाएं कि आज 74वीं सालगिरह है, सालगिरह के खुशी के मौके पर आपके प्यारी प्यारी बीबी साहबा हबीबन मीना रजब प्यारा प्यारा हैंडसम सा खाविन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ अर्ज किए प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश आपके वास्ते हम पेश करने को जा रहे हैं साहब ऑस्कर भगाएं 74 jaar vandaag geworden. Vandaag vrijdag 4 september. Gauw is goeie gemaakt. Aapke Pierre Pierre Bibi. Bibi ze hebben Habiben, Mina Rajab, Pierre Pierre Gavin Klee. Lerken, Faisal, Shirley, Nishal, Reza, Aur Sandi, Bhagai, Papa Klee. Suzanne, Vijay, Roopchand, Rabia, Claudia, Aur Anushka, Sasur Klee. Sabi Lerken, Ketrafse, Nana, Aur Dada Klee. Bari Piar, Mahabat, Aur Mubarak Badi. के साथ अर्ज करें बहुत ही प्यार और दुलार के साथ।

Zaandam ke rehne wala sahab Oscar Bhaga ke 74 saal giraj hai 74 se verjaardag hai saal gir ke khush ki maa ke pe pyari pyari bibi sahab habiban minna raja pyara pyara khavin ke liye larkan faisal shirley nisha leza aur sandeep bhaga papa ke liye suzan vijay rabia claudia aur anushka sasur ke liye sabhi larkan ki taraf se nana aur dada ke liye badi pyar mohabbat ke sath nahma ko farmaish ki साहब ऑस्कर भगाएं जितने से फरमाइश था अब खत्म होने पर आए हैं उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश सुनने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक वेंस यून हेल फैन मिदा फरियारी मोई से मनाइए सालगर मोई से मनाइए अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे खुश रखे तंदुरुस्त रखे और हर एक बीमारी से हर एक मुसीबत से आपको दूर रखे

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Jala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akina. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Ja, per toe, mooiste buitje taakse heel zoense kega. जब जस कॉन्सर्ट होने वाला है आपके खाते आ रहे हैं आपके शहर में बॉय के दादा दिन एंड बॉय के दादा दिन के साथ
1: आओ तुम्हें चांद पे ले जाए
0: माउस म्यू ब्रॉय

उजाला रेडियो है ये, सुनने वालों आज का प्रोग्राम में कुछ कृष्ण भजन आप सुन रहे हैं और यह है विशेष करके आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष पर आप हर एक को बधाइयां देते हुए उजाला रेडियो की तरफ से।

0: हाथ में देश का झंडा, एक हाथ में श्री नाम का झंडा, दूजे में तलवार, कोम का होगा तभी उधार।
1: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सूरीनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक एतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिक एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
0: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
2: In juli bestaat 40 jaar Nitin

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। रोटरडम से समस्त परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में ट्वीन तख्त यार औत पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयक उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पेम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल की पत्तो। रोटरडम एसलमोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेरखफोंदनवेग मिस्टर बोईती के निवासी जो थी। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में ट्वीन तख्त यार औत पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयक उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पेम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो आल्बा गोंजालेस की ननिया सास आईमी और फेलोरी देदर्त के पराजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पत्तो। रोटरडम एसलमोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक जातदास्तान्द फन एन तोत्वे उर रोसेंट्रम खुदजई के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे। मान दास्तान्द त्वे उर देला आंदफान क्रेमाटोरियम मातलिंकवेख 101 रोटरडम में।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कैपेला ऑन द एसिल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त की सास अनिल और मरलेशा दीदर्त की नानी आल्बा गोंजालेस की ननिया सास आईमी और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसलमोंडे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सुरीनाम न्यू वेरख फोंडनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कैपेला ऑन द एसिल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त के सास अनिल और मरलेशा दीदर्त के नानी आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमे और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसलमोंडे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रॉक सेंट्रम खुदजई के मुर्दालय भुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया किए जाएंगे आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदा होम ट्वी यूर देला क्रीमेटोरियम मातलिंक वेख 101 103 रोटरडम जुइट में।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। खुश ज़ीलैंड के रहने वाले परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वीयन तख्त ख्यार और स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, बेया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, सांद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर के भौजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी, रीता लेन बहादुर की बड़की, एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट वेलखर्स के सरहज और सभी लड़कन के बड़की माई, काकी, मामी, नानी और आजी, रोटरडम एसलमोंड लायरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और सूरीनाम में पहले न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। खुश ज़ीलैंड से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वीयन तख्त ख्यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, बेया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, सांद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर, इन लोगों की भौजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी, रीता लेन बहादुर की बड़की, एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज लड़कन के बड़की माई, काकी, मामी, नानी और आजी, रोटरडम एसलमोंड लायरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु हो गई है रोटरडम में। इन्हें लोग मारी बहादुर के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने की मौका है। शनिचर आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक जातर खानस्तान फन एन तो ऊर रौ सेंट्रम खुदजी के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 101 103 रोटरडम जुइट में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 51 55 02 71 06 51 55 02 71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार बहादुर और परिवार सुखदेव और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कापेल ऑन द एजल से बेटा ब्रिजानंद कुमार बॉयक बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिजानंद कुमार बॉयक बहादुर की माँ रोटरडम एसलमोंड लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेरखफोंडनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कापेल ऑन द एसल से बेटा ब्रिजानंद कुमार बॉयक बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिजानंद कुमार बॉयक बहादुर की माँ रोटरडम एसलमोंड लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रॉ सेंट्रम खुदजई के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे किए जाएंगे देला क्रीमाटोरियम माटलिंक वेख 101 101 रोटरडम जुइट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए।

0: और अभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर दिस इज डेनिस मॉय फ्रॉम द ANWB। देयर आर एट दिस मोमेंट गेन फीलमेल्डिंग एंड टॉट सोवेर द ANWB verkeersinformatie।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, और इसी लीला पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बड़ा नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। और यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती है सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना, सब झूठी हैं, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

इशारा किया कन्हैया, क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया,

आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के। कहने लगे, मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है। ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया।

0: उजाला रेडियो है ये। सुनने वालों, आज का प्रोग्राम में कुछ कृष्ण भजन आप सुन रहे हैं और यह है विशेष करके आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष पर आप हर एक को बधाइयां देते हुए उजाला रेडियो की तरफ से।
1: ना

प्रिय सुनने वालों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर उजाला रेडियो की तरफ से आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई पेश है।

और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर सुनने वालों, कुछ भजन, कुछ कृष्ण भजन आपके लिए पेश है। और उजाला रेडियो की तरफ से सभी सुनने वालों को ये दिन बहुत बहुत बधाई हो।

और जी में आता है कि जी भर के तुम्हें प्यार करूं, फिल्म ठोकड़ का गीत। और आप सुने मोहम्मद रफी साहब से, इसी फिल्म ठोकड़ से निकाला हुआ एक और गीत आप सुनेंगे मुकेश जी से, और ये उजाला रेडियो है।

प्रोग्राम में सुनेंगे कुमार सानू जी के जरिए अलका याग्निक भी साथ देंगे कि तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तो

चांद जैसी लड़की। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुने और फिल्म देवदास से निकाला हुआ। उजाला रेडियो पर अब लता जी। हाँ, लता जी के साथ श्री कुमार को आप सुनेंगे।

जिया जले, जिया जले, रात भर धुआं चले। लता जी की आवाज साथ में एम जी श्री कुमार, फिल्म का नाम दिल से, और जावेद अली की आवाज में गीत सुनिए।

बिन कोटरावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Life. Ujala Life.
1: सुन वालों, आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो और ये रहा अगला नंबर।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।